सड़क कम कर बना या जल लगज जे कोना साहब जे कोना साहब सारा को बने के दम को दे दे दकू